याद आती है हमको नानी, अब रो रो कर रस्ते में कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते।

रस्ते में निकल गया है अपना तो हाय रे कचूमर रस्ते में कभी न बिगड़े।